0: हो हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।
1: घर वाले भी ना मेरे समझते नहीं है कभी कभी, उसे स्टार नहीं है दुनिया।

विश्लेषण, मनोरंजन, साहित्य और कला, संस्कृति पर्यटन और विकास कला की जनपक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।

0: हाँ हाँ खुल के खुल के खुल के खुल के खुल के खुल के
1: हे शिवपुरी देखियो तुझे कसी पाय चूड़ी खेल माटुस है ना खेल गारे को साथे हो भने को चूड़ी खेल माटुस मंचे सानी सानी हे ना काली नानी की ना झपर घर भाग।

विचार विश्लेषण मनोरंजन साहित्य कला संस्कृति पर्यटन र विकास कला जनपक्षीय आवाज हम रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज।

0: सिद्धिमेश्वर मंदिर में दर्शन कर आने भक्तजन में हार्दिक अनुरोध
1: विभिन्न धर्मावलम्बी साझा आस्था को धरोहर विश्व विख्यात श्री श्री श्री भीमेश्वर भीमसेन भीम नारायण भीम भैरव भगवती महाकाली भगवान बुद्ध किरातेश्वर महादेव महारुद्र भीम राणेश्वर आदि भगवान को एक शिला सहर्ष अवतार को रूप में पूजिने भीमेश्वरलाई आफ्नो विधि अनुसार पूजा पाठ गर्दा तपसिल का विषय में ध्यान दी आफ्नो मनोकांक्षा पूरा गराउन हुन सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।